केवेनष्टेयाता तवाचोता सोवाने हकेवेनष्टेयाता नएङ्यता सोवाने आ याय आ याय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनवाया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनवाया शेक्यां।

ने आकाशे आये बाला मन से बोले से जोरो से है ऐसे से कल्पवा माता ये मया ने